0: थो रेडियो नेपाल ख नेपाल पासे समाचार जिउ पेशपाखे निना दिस थौ नेपाल सम्बत चिन्ससो पिकु द तसला थो पुनि थौ असार पन्ध्र गते राष्ट्रिय वा दिवस कृषि प्रधान दे नेपाले छम्ना पिना मुरी सेकेगु निया रूप असार पन्ध्र गते या त नालाकै उकी थौ असार पन्ध्र गते धौ बजी नेगु परम्परा दो धौ बजी उसै मधुगु महया त भिङ्गु उसै एनाबी किसान पिन्स दक्षित क ने त सिनेज्या नाप असार मे हाला वापी तर थुसी इले झरी दुहा मगुली आफ्ल थासे वापी खङ्गु मधु देशी सान मध्या पिगु ज्या लिबागु धागु दो प्रतिनिधि सभा या मिग या बैठक बजेट या स्वापु दुगो आर्थिक बजेट 2083 बहुमत व राष्ट्रिय ऋण भएको विधेयक 2083 सर्वसम्मत पारित जुगुदो सभा अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले निहव्यादिगु थो विधेयक पारित जुगु सभामुख डोल प्रसाद अर्याल घोषणा एना दिएको ख आर्थिक विधेयक 2083 सन् हेको संशोधित सूचन व राष्ट्र ऋण भएको विधेयक सङ्घ संशोधित सूचन व गो ख प्रतिनिधि सभा मेघ या निकोगो बैठके सार्वजनिक खरिद विधेयक सम्पत्ति शुद्धिकरण विधेयक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक हो सहकारी नापाङ्गु संशोधन विधेयक 2083 या त विचार या ना दिशा धैगु प्रस्ताव बहुमत स्वीकृत जुगुदो अध्यादेश या त प्रतिस्थापन या त हगु उगु विधेयक या त कया सैद्धान्तिक सललिपा निर्णयार्थ निहवले स्वीकृत जुगु ख उगु विधेयक या त संशोधन या मधुपिन सांसदीय नीति सङ्घीय संसद या विधेयक शाखा प्रस्ताव ह्यवे त इनाप याना त गुदो भूमि व्यवस्था सहकारी सङ्घीय मामिला लिचे सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा राव उगु विधेयक विचार एना दिशा तका प्रस्ताव निहवादिको ख स ल स लङ्गु निहस याली सब यादिसे मन्त्री रावल सहकारी क्ष या त व्यवस्थित व प्रकारी देकुसे सहकारी पाखी पीडित या धेवाली त बिके त विधेयक हयागु नेतना दिल होयक सहकारी पङ्ग या त वास्तविक कथ हे जेङ्के त सरकार कतिबद्ध दुगु धयादिसे नापाया हे सरकार या योजना कथ चक्रिय राहत कोष निस्नागु धका जानकारी बिया दिल स ल स सांसद पी नरेन्द्र कुमार केरुङ अशोक कुमार चौधरी समीक्षा बास्कोटा बासना थापा गङ्गालक्ष्मी अवाल खड्ग बहादुर साई हरिमोहन भण्डारी गणेश बहादुर विश्वकर्मा बलावती शर्मा बदन कुमार भण्डारी साजिता खातुन सिद्धकी बती कैदीको ख सांसद पिन्छ सक्रिय त आर्थिक रूपान्तरण या था या कथ पलिस्ता या से थुकिया त व्यवस्थित व पारदर्शी या मागु नेतना दिल वे कपिन से सहकारी ठगी लाना निया नित ज्यायना नेमापिन त अपो लिचो लाका चुङ्गु सन्दर्भे पीडित त राहत व क्षतिपूर्ति वित कानुनी संशोधन या मागुली बह बिया दिल सहकारी ठगे यही म न्यामे जुगु खसा व या त कानुनी कारवाही या त लिचले मजुगु इनाप या से वे कपिन से न्याना चुङ्गु संसद इत स्थगन याना अध्यादेश पाकिङ विधेयक हेगु प्रविधि नङ्के त इनाप याना दिल उपराष्ट्रपति रामशाह प्रसाद यादव शिक्षा त अनुसन्धान नव प्रवर्तन व डिजिटल प्रविधि नाप स्वयामा धैतिगुदो मदन भण्डारी मेमोरियल कलेज या बुद्धि आलसत्या जुगु ज्याजोसँग कृत्रिम बौद्धिकता व आधुनिक प्रविधि या त विद्यालय नाप विश्वविद्यालय तकिया शिक्षा नाप स्वयामा धैतिगु ख नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी या कजी व पुलवामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड वामपन्थी व देशभक्ति पि याक्न छप्प जुइमागु बिचा पोङ्का दिगुदो वेक्ल गुलिफु उली सहकारी यामागु खेम प बियादिगु ख मिग मदन भण्डारी या ने न्याक गो बुधि या ज्याजो सो नुना दिसे वेक्ल थते धैदिगु ख ज्याजोसँग पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेव भण्डारी वङ्गो फागुन 21 या निर्वाचन या लिचो कथ नेपाले कम्युनिस्ट आन्दोलन कोचागु लिचो पिक्या मुज्यु धैदिगु ख वेक्ल इल कथ आन्दोलन हिके मागु खेन प ब्यादिल ज्याजोसँग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले नायक केपी शर्मा ओली प्रतिगुण या त बुके त लोकतान्त्रिकको वामपन्थी शक्ति छप्प छति जुइमा धैदिल अथे नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ल्यु कजी माधव कुमार नेपाल ल्याम तेस अञ्चक कम्युनिस्ट आन्दोलन झ्याके फैगु बिचा पोङ्का दिल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेता जलनाथ खनाल कम्युनिस्ट पार्टी पी छप्प मोजुक मगा धाइदिल मदन भण्डारी फाउन्डेसन मदन भण्डारी राष्ट्रिय शिर्पा 2082 चोमी व अध्यता रमेश रुचेन राई या त ललहागुदु कोख याना सोनिगले बर्फु तचोको निना चोङ्गु धागुदो थनिया कोते बर्ड फ्लू ले खने दे ढुङ्का सुनिग ज छि निना वङ्गु ख पशु सेवा विभागीय महानिर्देशक डाक्टर उमेश दाल कोतले बर्ड फ्लू खने दुग्ली सोनिग जसी निङ्गु नेतना दिला खा हे तेके खने दुगु बर्ड फ्लू या त नियन्त्रण क्या फै बर्ड फ्लू खने दुम को या त नियन्त्रण क्या फैमको वेकमा धया दिला सत चिडियाखाना लिसे अप धाइथे थासे कोख याना हे संक्रमण फुङ्गु ख महानिर्देशक डाक्टर दाहाल संक्रमित को छङ्गु थास मेगु थासे बोया उना लुए निङ्का चुङ्गु नेतना दिला रौतहटिया गढीमाई नगरपालिका हरैया घाटे बागमती खुसी लाल कागु झोले दबे जुया निम मस्त सिगुदु जिल्ला प्रहरी ज्याको रौतहटिया कथम हिक हिने गढीमाई नगरपालिका ए क्या भन्टु राई यादव या च्यादव या क्या अनिकेश यादव ओ सुरेश यादव या च्यादव या क्या आदित्य यादव सिगु ख साउदी अरेबिया छग हेलिकप्टर छाकेलाना चिन पेम सिगदु साउदी अरामको चिक कम्पनी हेलिकप्टर छाक्या उकी दुपी फुक्क मुनु त सिगु ख सिपी फुक्क साउदिया नागरिक जुगु धागुदु फ्रान्स या उत्तर पूर्वी टम्ब्लेन सहरे छगु विमान छाकेलाना चिनसम्म सिगुदु विमान ब्रेकेगु बनिकुथी या जुग्नी छम पाइलट नाप न्याम विद्यार्थी वा न्याम प्रशिक्षक सिगु धागुदु भग्नावशेष हनाचङ्गु अवस्था भेनेजुएला बोगु विनाशकारी फुका लिपा उद्धार कर्मी पिन्स आतक स्विसम्म नाप मनाचङ्गु अवस्था उद्धार यागु दु मिग जग सोम मस्त नाप उद्धार यागु थागु दु मिग जग चिन छदया निम ओ चिन पेदया छम नाप ओ या मा या त उद्धार यागु ख सलस उद्धार कर्मी पि अजन भग्न हनाचङ्गु सम्भावित मनाचुङ पि मनुते त मालेगु ज्या खटेजु या चङ्गु दु आतक भेनेजुएला सिप निगोल्या चिन पेस ओ नेम थेङ्गु दु फुख्या बुया पिगौ निसे ने निगौ तक मुनु त मनाचङ्गु धैगुली उद्धार कार्य त धिसिलाक न्याका चङ्गु धागु दु नकआउट चरण या नापाङ्गु फिफा विश्वकप धेदे बेला दक्षिण अफ्रिका त छग गोल क्यानाडा बुकुगु दु क्यानाडा प्रिक्वार्टरे फाइनले थेङ्गु दु मिग निसे स्विनिगु पुचय नकआउट धेदे बेला न्यागु ख मङ्का कथ क्यानाडा अमेरिका वा मेक्सिको न्याका चङ्गु फिफा फुटबल धेदे बेला चिन्कुगु पुचले क्यानाडा दुहाँ वङ्गु ख थो क्यानाडा या नीति आतक दक्ले तरङ्गु त्यागु ख कासा या इन्जुरीले स्टिफन स्टाकियो गोल याना दिगु ख क्यानाडा प्रिक्वार्टरे मोरक्को वो नेदरल्यान्ड्स या दथुई ट्याइगु पुच नाप क्वार्टर फाइनल या नीति मिटिगु घोषादु सोकदक विश्वकप मिटुगु क्यानाडा थोन्यने पुच चरण हे बुगु ख ए महानगरपालिका विद्यालय स्तरीय नापाङ्गु उपमेयर कप खोखो धेदे बेला शनिबार कोचागुदो फाइनल कासा लिचोकत शान्ति निकुञ्ज माभि या मिजपिनीको टिम व कन्या मन्दिर माभि या मिसपिनीको टिम नापा विश्वनिकेत माभि या मिजपिनीको टिम व पद्मकन्या माभि या मिसपिनीको टिम लिउ व भीमसेन कोला माभि या निगुली टिम लियालु लागुदो कासा नापा लिउ व लियालु लापि कासामी नापा बेस्ट रनर व बेस्ट चेजर कासामी पिन्त ये महानगरपालिका या कार्यवाहक मेयर सुनिता डङ्गोल मेडल कप उत्सेक लहना दिगु ख कासा नापा लिउ लिया लिउ लागु टिम या त छसिक त नेदो नि न्यादो छिदो नप बेस्ट रनर व बेस्ट चेजर या त न छिदो छिदो त क्या चेक लहना दिगु ख थौँ देन्याङ्क मौसम हिला वा वैगु हिमाली लागे चपु क्वा वैगु धागुदु बागमती प्रदेश या सोनिग नाप थिति थासे आ सुथेनिसे वा वयाचुङ्गुदु कोसी या पहाडी हो तराई लागे आप्ल वा वैगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग धागुदु थन धाकु फे न वे फैगु दुखमा यागुदु मिग सोनिगले सुइगु फुटी न्यागु डिग्री सेल्सियस क्वा जो लुगु ख सुते न्या त इजुया न्यागु मिनेटे लुगु सूर्य सोनिले निहे त इजुया छिगु मिनेटे बी नेपाल भाषी बुख कोचाल शुभ सु
1: सुशासन प्रवर्धनमा आम नागरिकसँगै सामाजिक स्वयंसेवी संघ संस्थाहरूको ठूलो भूमिका हुन्छ।
2: त्यसैले स्थानीय तहमा सुशासन प्रवर्धन गर्न स्वयंसेवी नागरिक संस्थाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ।
1: नागरिक संस्था आफू पनि जवाफदेही र पारदर्शी बनौ र अरूलाई पनि आफू जस्तै बन्न प्रेरित गरौ।
2: नेपालमा सुशासनको पहल ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल भ्रष्टाचार विरुद्धको सहकार्य।
3: हाम्रो संस्कृति,
4: हाम्रो परम्परा, सभ्यता, हाम्रो नेपाल राम्रो, संस्कृति पवित्र,
3: लुकेका स्वर्ग समुच्चा जाति यसमा छन् विचित्र।

0: यति हाते पारण किन गर्थे मैले साँच्चै मनन परे महिना वर्ष दिन कुरी बस्थे किन साँच्चै मनन परे
1: एकदम राम्रो बाउसी गरेछ एकदम ठिक छ ल बर्खे।

ल्याखुङ कि लेन ख्यापेल कि तुमी कि दासा बङ्गिला निमाङ्गी सुमस्याक्ला छरमाङ ग्याथोपु नेताङ तुप मौसम पूर्वानुमान महाशाखा कि सेन वाय हारिङिनमो कोशी बागमती तङ गण्डकी प्रदेश कि खाङरी तङ फू सकुल कि दासा बङ्गिला तङ लुम्बिनी कर्णाली तङ सुदूरपश्चिम प्रदेश कि खाङरी तङ फू सकुल कि दासा लालाला थक तङ डुगेकु तङ छरवागेकु नेताङ तुप सेन वाय कोशी प्रदेश कि फू तङ तराई सकुल कि दासा चिक्सोङी सोला छर बङ्गिगेकु नेताङ तुप सेन वाय तुग्रङ क्याने कोशी प्रदेश कि तराई तङ मधेस प्रदेश कि दासा चिक्सोङी सोला लुङ्गेकु नेताङ तुपसङ सेन वाय दिपालाराङ दिलो कि छरवाकी जोसलेन्सी बैतडी जोङखाला तोङ च्याप्गे मितेवाला क्योन फोक्तोपु न्याम्युङ क्यान वाय जोङखी रङजुङ काले टडिक क्याउ मनसुन प्रिपेयरनेस एन्ड रेस्पोन्स प्रोग्राम नङसिन जोङखी तोङ सुमताङ सही टुकताङ ङपचुङा जि खाङबी तोङ चुपदिनताङ सही ग्या मितियो सतक ताङ टोकपी तेमा क्योन फोक्थोपु ङ्यामयुङ क्यान वाय सोकपी ग्याजिनपा तेजिन जोङखी अधिकारी डाक्टर डिजन भट्टराई कि सेतुप नङसिन रङजुङ कल्यातुई तेमा फोक्थोपु क्योन युङमो जोप्ला गमालाराङ टडिक्याउ सेन वाय रेडियो नेपालले आरिङ कि सेरिके कि साङ्गिर डुप्सुङ तुझिछे।

जो रोमान्टिक माया प्रीतिल वाइलिचा दारेम बिसम गेतांग रिचु देपेन्नु ओरिजिनल काइपा बिमा स्यान काइपा काइमोस कोबा रिमिक्स वाइङ्यान्गे चुवाई द तामाङ वाई संगीत थुम्ला मूर्धन्य अर्थात लेजेन्ड काइबा चन्द्रकुमार दोङसे लामन दिङ्गा छकोबो मुबा दन्दे रापन मुबा वाई हिन्ना वाला वाला ग्राम्बा चु वाइदात काइपा चन्द्रकुमार दोङसे तेब दुरी कतिपय मिसे ब्यान्ड लदोला अर्थात सार्वजनिक लारी रापर पिन्ना आदि चु क्यासेट एल्बम द चुमेर पिन्ना आदि बिसे काबा नुन मुबा तसैनुन चु वाइदा गाइ गेताङ सिंह तेब बेनन रेडियो गेताङ गदरी निर्धक्क रापसे पिन्मा मुबा वसम मेट्रो एफएम ला नाङसल गेताङ रेम गाइ चु वाइदा धुन्दा फिलर म्युजिक ला रुपनि नुन रापन खापा मुबा थेली छ चु वाइदा तामाङ वाई संगीत ला गिक्स र्यापर उतरलामा सङ्गुल छेनुन रिमिक्स ला बमुबा दन्दे बिसम चुवाई द प्रकाश तामाङ तितुङ सुमिना लोथेन युद्ध लामा से डेपेन को बमला गीताङ रिङ्यानगे वाला वाला ग्राम्बा च्यागोई साइलीला वाला वाला ग्राम्बा चुलबुले साइलीला वाला वाला ग्राम्बा रे चोक चोक लाइलम खाला खाम्बा बेबुवाई

यान्छुजी वालावाला ग्राममा चियागोई साइलीला वालावाला ग्राममा चुलबुली साइलीला वालावाला ग्रामबारी चोक चोक लाइलम खालखाम्बा बेबा रिमिक्स वाई गेतङ सालगारी देपेन ग्यानगे साङ्गला जिरमा गुवाइबारी मेन्दो तोजलासी बाबा छाइला छोरी बेबा अर्को रिमिक्स वाई जु भाइला ओरिजिनल काइपा खाइमो विषम चन्द्रकुमार मोक्तान थे निमाला महिन्दा दान्दिचु वाइदा सुनिल लामा थेन सोनिया लामा सिकोबमला विषम जु वाइरी वाइएसके से रियाप्युबमला

सुनन वाइगा दला छम छमरे तिनीला गेतांग या फेसने ब दुई ता सुजिन बबला गेतांग या छु बारी रंगदला मला मन तुजे छे गेतांग सालगारला फिरी रंगला तिलाई सल्लाह सुझाव गुनासो देन प्रतिक्रिया गदे मला बिसाम गादा सीदन 9855168894 सम्पर्कला बरी थेन नाला इमेल ठेगाना muktansurya39@gmail.com थेन टी प्रोग्राम salgar@gmail.com रे इमेल लबरी रंगदा मोइजेल नबन तिनीला गेतांग याम रंगला रोंगा सूर्य मुक्तान फेसनीला रंगला चुंगी सोजा बतागई लसु फ्याफुल्ला।

सु रेडियो नेपाल हिन्न तामाङ सानगिरी ढाङनी दा झेनमुला ङ इन्दिरा थिङ राष्ट्रिय सभा लातिनी लाची साङ्री विनियोजन विधेयक 2083 थोरी विचार लातोजी विवाह प्रस्ताव बहुमत से स्वीकृत लाभामुला चिसाङ्री नोर्ब्लोन डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेसे विनियोजन विधेयक 2083 थोरी विचार लातोजी विवाह प्रस्ताव थान्स्युबा मुबा काठुरी थोनबा प्रश्न कदेला जवाब पिन्स्युबान नोर्ब्लोन डाक्टर वाग्लेसे स्यार थुम्री प्राङबो कादेला पहुँच सहज शोभा दलित थेन प्राङबो ल

से सुन ला भ्लुनोन थानबारी याङबा आरे सार ब्लू सिचाई थेन प्रविधि ला समस्या नातो बा मुला सुङबान समस्या थुम्ना लाबारी सरकार ला धान छेङना ला शिवबा मुबा सांसद कार्य से पेट्रोलियम छिकुला टाङ्गा जाम्बुलिङ रिन च्याङना तामानोन नेपाल डी तिल्दा च्याङना आलाबा भिवान टाङ्गा च्याङना लाबारी पाङबा मुला सांसद कार्यसे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी से तोङ सोमचिङा बिमा लाना जाजा कोला कादेदा पार्टीला सदस्य शोभा ताम्री सरकारला ध्यान छेङना लाबान विरोध लाबा मुला सांसद कार्यसे कक्षा चुई निला लोबोन ला भविष्य नोङना लाबा लासी रिजल्ट छिपा विवान सुधार लाबारी सरकार दा पाङबा मुला सुङबोन डोल प्रसाद अरियाल से सांसद ला गे कादे मिनिसे लोलो लोलो माध्यम ग्याम च्यासी चिबा मुला सुङबान मोकोन सांसद राङला गे रि जिम्मेवार तादोला बिसी सुङबा मुला संघीय सांसद लोन खाङ से प्रतिनिधि सभाला सांसद कार्यदा तिनी याम्बुरी सेङबा अभिमुखीकरण गेखोरला ठोङसेङ लासुबान सुङबोन अरियाल से ठिम सोबारी मुल्मी कादे से गाछा लाबा ज्याबा गे कादे ग्याम लोपारी खामदोला बिसी सुङबा गेखोरी लोपखाङला लोन्छेन पद्म प्रसाद पाण्डे से ढेनला शिवान सांसद कादेदा संसदीय प्रक्रिया थिएन छिमला ताम्री गोना लाबारी बिसी लोनखाङ से संसदीय प्रक्रिया थिएन अभ्यासरी निराला अभिमुखीकरण गेखोर सेङबा हिनला बिसी सुङबा मुला लोनखाङ से सांसद कादेदा संघीय प्रक्रिया थिएन विधिला ताम्री झन्कारी पिनबारी बिसी सिंहदरबारला संसद दिमखाङरी तिनी थेन नाङ्गार होजा अभिमुखीकरण गेखोर सेङबा हिनला युलबाङ सुन दिन्छेन तिनी लोलो लोलो गेखोर सेङसी धाङबन मुला युल्ला ग्रेन जनसङ्ख्या सानाम्री शोभा ताबासे सरकार से 2062 साल हेन्से दिङे दाङसे असार चुइङहाला कुनु सुन दिन्छेन धाङबारी ती बाहिला तिनीन सानम्बोन कादेसे दही फालाङ्गी चासी असार चुइङहा धाङबन मुला तिनीला राधा सानम्बोन कादेसे माना गिग सुसी मुरी गिग रोना लाबा रा रिन किन्बा लाबा मुला निचुई सोमचा हुलबाङ सुन दिन्छेन लाप्सरी तिनी मानसाङ सानगिर सुङबान हुलचोहो रामचन्द्र पौडेलसे सा भाँ जो थान्बा गेदा थुम्ना लासी सानाम्री आधुनिकीकरण तोला बिसी सुङबा मुला चुडाङ लासिन सुन दिन्छेन 2083 लाप्सरी सानम रिथेन पर्यावरण ब्लोन गीता चौधरी से जलवायु पोबा चुनौती नाबन सुन रोना लाबादा लेना लाबारी आधुनिक प्रविधि अनुसन्धान थेन मोकुन सरोकार थान्बा कादेला रो तादोला बिसी सुङबा मुला नोरब्लोन डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेसे नेपाल धितोपत्र बोर्ड सोबोन ला छार धाम्बा चोहो डाक्टर गोपाल प्रसाद भट्टादा धान्थेन गोपनीयताला ग्रान ख्वासुबा मुला तिनी ब्लोन खाङरी सेङबा गेखोरी ब्लोन डाक्टर वाग्लेसे डाक्टर भट्टादा ग्रान ख्वासुबा हिनला चो असार घाला कुनु चिबा ब्लोन सेङझाङला चिसाङसे भट्टादा बोर्डला चोहोरी नियुक्ति लाबा मुबा ग्रान किन्छुबा लिचा नोरब्लोन डाक्टर वाग्लेसे छार नियुक्ति चोहो भट्टादा लगानी लाबा कादेला लगानीला सुरक्षा थिएन हित्री इमान्दार ताची गे लाबा सुङबा मुबा रिमठिम पर्यटन थिएन नागरिक उड्डयन ब्लोन खड्क राज पाण्डे से नेपालला हवाई उद्योगला थुम्री सरकार से धातेन तिलाई लाबारी खाम्बा धुई आरे बिसी सुङबा मुला तिनी ब्लोन खाङरी सेङबा नेपाली हवाई उद्योगला नोर स्थायित्व थिएन सुरक्षाला ताम्री काठु लाबा गेखोरी लिङ्मो थान्सिबान ब्लोन पौडेल से नेपालला हवाई थुम्री सरकार राङसेन लगानी लासी गाछा बोर्बा धुई आरे बिसी सुङबा मुला ब्लोन पौडेल से नेपालला हवाई उद्योग दा ज्याबा आसोना हुल ज्याबा ताबारी आखाम बासे सरकार से चु थुम्ला विकास री चुनोन थुम्ला मिनितेन काठुई लासी गाछा निभा योजना शोभा मुला बिसी सुङबा मुला त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल से लुई बिमा गेखोर्दा दोषी सेङबा ताबा मुला निबा मा घिग्ला कुनु हेन्से बन्द लाबा बिमा गेखोर तिनी हेन्से अस्पताल से दोषी सेङबारी माइबा किन्ला अस्पतालला कार्यकारी निर्देशक डाक्टर सुभाष प्रसाद आचार्य से सुङबा अनुसार दातेला ओपिडी री बिमा सेवा सेङबा थिएन तिलाई रा लिछा स्यान्दो सेवा रिन लासेदा मुला लुई बिमा गेखोर ग्याम अस्पताल से पिनबा मानला टाङ्गा आयाङबा लिछा सेवा बन्द ताबा मुबा मुर थुम्री ताबा तस्करी काबारी जोङला सुरक्षा दा

सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दिवास थिक विजय झा सा सुनल जा मैथिली भाषा में समाचार। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल जमीन के बाँझ राखे वाला प्रवृत्ति के अंत क कृषि में आधुनिकीकरण आवश्यक भेल बतौलने। आई तेसम राष्ट्रीय धान दिवस 2083 के अवसर पर संपूर्ण कृषि दीदी बहन तथा भाई भैया में सुख शांति समृद्धि के हार्दिक शुभकामना व्यक्त करे तो कहलन कृषि में आधुनिकीकरण करत विदेश पलायन होब बाध्य जनशक्ति के स्वदेशी में रोक कर कृषि में आकर्षक पेशा के रूप में विकास कर सकला पर धान एवं चाउर आयात न्यूनीकरण कैल जा सकत। धान रोप वाला आ फल वाला के महीना कृषि कार्य के लिए विशिष्ट भेल चर्च करते राष्ट्रपति पौडेल नेपाली परिवेश के जीवनशैली प्रकृति आ माटि संग अत्यंत निकट रहल बतौलन। थाल संखलित खेत के भीतर में धान रोप के आ दही चूड़ा अचार लगात परिकार के दिन के आर विशेष बनेबाक हुनकर कहब छलनि। कृषि में परनिर्भरता बढ़त गेल कारण अपन देश में धान के उत्पादन वृद्धि आधुनिकीकरण व्यवसायीकरण के प्रवर्धन करबाक उद्देश्य से विक्रम संबद्ध 2061 से प्रत्येक वर्ष अखाड़ 15 गते के राष्ट्रीय धान दिवस के रूप में मनेबाक शुरू कयल गेल अछि। एहि वर्ष जलवायु मैत्री प्रविधि धान के आत्मनिर्भरता समृद्धि अई आदर्श वाक्य के संग दिवस मनाल जा रहल अछि। हुनका द्वारा जारी शुभकामना संदेश में कहल गेल अछि नेपाल के धान खेती वर्षा में निर्भर अछि। वर्षा नीक नहीं भेल त वर्षा वर्ष में धान उत्पादन घटबाक आ वर्षा नीक भेला पर उत्पादन बढ़वाक संदर्भ में धान खेती योग्य जमीन में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराबा राज्य के संपूर्ण ध्यान केंद्रित होयब जरूरी अछि। राष्ट्रसभा के आजुक बैठक में विनियोजन विधेयक 2083 पर विचार कैल जा कहि का प्रस्ताव बहुमत से स्वीकृत भेल अछि। बैठक में अर्थमंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले विनियोजन विधेयक 2083 पर विचार कैल जा कहि का प्रस्ताव प्रस्तुत कने छलथि। विचार विमर्श के क्रम में उठल प्रश्न के जवाब देत अर्थमंत्री डॉक्टर वागले शिक्षा क्षेत्र में गरीब वर्ग के पहुँच सहज बढ़ेबाक दलित आ गरीब के रेखा नीचा रहल धियापुता के पौष्टिक आहार उपलब्ध करेबाक तथा बिजली क्षेत्र के प्रवर्धन के सरकार प्राथमिकता में रखले जानकारी दिलन। अर्थमंत्री डॉक्टर वागले अर्थतंत्र के थप औपचारिक बनावा आयकर आ मूल्य अभिवृद्धि कर में सुधार कर अर्थतंत्र के चलेमान बनेबाक आंतरिक उत्पादन के प्रोत्साहन करबाक तथा उद्योग मैत्री आ निजी क्षेत्र मैत्री बनाकर कर प्रणाली में विकृति हटेबाक व्यवस्था कैल गेल बतौलन। प्रस्ताव ऊपर के सैद्धांतिक विचार विमर्श में सांसद सब बजट मध्यम वर्ग आ गरीब नागरिक के आवश्यकता के पर्याप्त रूप में संबोधन कर नहीं सकल बतबैत स्थानीय तथा प्रदेश सरकार के कैल जाय वाला वित्तीय हस्तांतरण संबंधी व्यवस्था में थप स्पष्टता तथा बढ़ रहल महगी के नियंत्रण दिस ध्यान केंद्रित होबाक चाही पर जोर दिलन। राष्ट्रसभा के दोसर बैठक अखार 17 गते बुध दिन 1:15 में बैसत। सरकार खाद्य सुरक्षा गुणस्तर तथा उपभोक्ता स्वास्थ्य संरक्षण के उच्च प्राथमिकता में रखत बाजार अनुगमन के तीव्र बनौलक। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मंत्रालय मंत्री निशा मेहता के निर्देशन में मंत्रालय अंतर्गत के खाद्य प्रविधि तथा गुण नियंत्रण विभाग अखाड़ 14 गते काठमांडू उपत्यका में घुमती प्रयोगशाला मोबाइल लैब सहित 3 अलगल के टोली परिचालन क व्यापक अनुगमन तथा निरीक्षण कने जनाल गेल। होटल तथा रेस्टोरेंट अनुगमन टोली काठमांडू महानगर पालिका वार्ड नंबर 10 बानेश्वर स्थित आनंद भूमि बिजनेस सेंटर के स्टोर में कॉस्मेटिक ग्रेड के रोज वाटर खाद्य प्रायोजन के लिए राखल गेल भेटलाक बाद यह खाद्य रोज वाटर तत्काल नष्ट कलक। संगे संबंधित व्यवसाय के आवश्यक कागजात सहित 5 दिन भीतर विभाग में उपस्थित भ स्पष्टीकरण पेश करबाक लेल निर्देशन देल गेल। मंत्री निशा मेहता जन स्वास्थ्य संघ प्रत्येक सरोकार रखे वाला खाद्य तथा उपभोग्य सामान के गुणस्तर में कोनो समझौता नहीं होबाक स्पष्ट करत उपभोक्ता के स्वास्थ्य में जोखिम सृजना करे वाला व्यक्ति व संस्था ऊपर कानून बमोजिम कड़ा कार्रवाई कैल जेबाक बतौलने। सभामुख डोल प्रसाद आर्याल विश्वभर सार्वजनिक लेखा परीक्षण में उपयोग भ रहल आधुनिक सूचना प्रविधि तथ्यांक विश्लेषण तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग क तीव्र रूप में बढ़ रहल परिप्रेक्ष्य में नेपाल के लेखा परीक्षण व्यवस्थापन प्रणाली के थप परिष्कृत करबाक आवश्यक रहल बतौलने। महालेखा परीक्षक के कार्यालय अपन 68वां वार्षिक उत्सव समारोह के संबोधन करत ओ कंप्यूटर सहायता प्राप्त लेखा परीक्षण उपकरण के प्रभावकारी प्रयोग जनशक्ति विकास तथा संस्थागत क्षमता वृद्धि में कार्य
क्लेश विशेष ध्यान देबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। लेखा परीक्षण के संबंध में जारी भेल मार्गदर्शन आ निर्देशिका के प्रभावकारी कार्यान्वयन से लेखा परीक्षण के गुणस्तर कायम होबाक विश्वास ओ व्यक्त कयलनि। हरेक वर्ष वह प्रकृति के बेरोजी दोहराब वित्तीय अनुशासन आ सुशासन के दृष्टि से चिंता के विषय भेल सभामुख कार्यालय के कहब छलनि। सार्वजनिक स्रोत के प्राप्ति परिचालन उपयोग के स्वतंत्र मूल्यांकन कर सुधार के विषय भेला से महालेखा परीक्षक के कार्यालय प्रति राज्य के सब निकाय तथा नागरिक के उच्च अपेक्षा रहल सभामुख कार्यालय के कहब छलनि। ओ वार्षिक उत्सव केवल स्थापना दिवस के उत्सव मात्र नहि भर सार्वजनिक वित्तीय सुशासन पारदर्शिता जवाबदेहिता तथा वित्तीय अनुशासन प्रति के सजिया प्रतिबद्धता के पुनः स्मरण करय वाला एकटा महत्वपूर्ण अवसर सेहो भेल स्पष्ट कयलनि। कृषि वन तथा पर्यावरण मंत्री गीता चौधरी जलवायु परिवर्तन के चुनौती सामना करे धान उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करबाक लेल आधुनिक प्रविधि अनुसंधान सब सरकार वाला बीच के सहकार्य अपरिहार्य रहल बतौलने छ। मंत्री चौधरी 33वां राष्ट्रीय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव के अवसर पर शुभकामना संदेश जारी कर धान नेपाली के धर्म संस्कृति आ परम्परा संग जोड़ल गेल महत्वपूर्ण बाली भेल बतौलन। ओ स्थानीय तथा जंगली धान जाति के संरक्षण संवर्धन आ उपयोग से जैविक विविधता जलवायु सहनशीलता तथा दीर्घकालीन खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान पहुँचौने बतौलन। जलवायु मैत्री प्रविधि धान में आत्मनिर्भरता समृद्धि अय वर्ष धान दिवस के नारा से वर्तमान कृषि क्षेत्र के आवश्यकता आ चुनौती के संबोधन कर में सहयोग पहुँचत सेहो विश्वास व्यक्त कयलनि। जलवायु प्रविधि धान में आत्मनिर्भरता समृद्धि मूल लाड़ा राष्ट्रीय धान दिवस आई मध्य प्रदेश के जिला सब में सेहो विभिन्न कार्यक्रम के आयोजना कर मनायल गेल। राष्ट्रीय धान दिवस के अवसर पर जनकपुर धाम के वार्ड नंबर 14 मुजेलिया में रहल अपने बटैया अर्थात अधिया खेत में उप सभामुख रूबी कुमारी ठाकुर अन्य किसान दीदी बहन तथा भाई भैया संग मिलकर धान रोपलने बिना कोनो तामझाम सहित स्वतः स्वस्फूर्त रूप में सहभागी भक किछ समय धरि उपसभामुख ठाकुर धान रोपने छलथि। उपसभामुख ठाकुर खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य के उत्पादन में किसान के अधिक भूमिका भेल बावजूदो समय में रासायनिक खाद उन्नत बीया पर्याप्त सिंचाई उचित बाजार एवं मूल्य किसान सबके नहीं भेटब चिंता के विषय भेल बतौलन। उ कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा किसान सबके जीवन स्तर ऊपर उठाव वाला सन कार्यक्रम तथा नीति निर्माण के लिए स्वयं निरंतर रूप में आवाज उठा रहल बतौने छलथि। अही बीच 23वां राष्ट्रीय धान दिवस के अवसर पर वीरगंज महानगरपालिका कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय प्रवर्धन शाखा आयोजना में धान रोपाई कार्यक्रम भव्य रूप में सम्पन्न भेल। अही वर्ष के जलवायु मैत्री प्रविधि धान में आत्मनिर्भरता आ समृद्धि अ नारा के संग दिवस मनायल गेल। कार्यक्रम वीरगंज महानगरपालिका के कार्यवाहक नगर प्रमुख

कुटुमेश्वरी पुल के कारण सवारी आवागमन में कठिनाई भर रहा है। महतरी गांव पालिका वार्ड नंबर 1 परसा स्थित बिगही नदी ऊपर निर्माणाधीन कुटुमेश्वरी पुल में सामान्य वर्षा भेला से डायवर्सन धंसा के आ दहा के कारण से घंटों धर सवारी आवागमन अवरुद्ध होते आल माटि बालू से बनाल गया डायवर्सन सामान्य वर्षा में दहाव आ पुल संग जोड़ल गया माटि के सड़क में बड़का सवारी साधन चलला से बाढ़ से धसक के समस्या के कारण यात्रु के समस्या भर रहा है। भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र भिट्ठा मोड़ से जनकपुर धर जोड़े वाला मुख्य सड़क के रूप में रही सड़क खंड में पुल निर्माण समय में संपन्न नहीं भेला से हरेक वर्षा के समय में सवारी आवागमन प्रभावित होते आयल 2079 फागुन 2 गति राम जानकी निर्माण सेवा जनकपुर धाम लगभग 20 करोड़ टका के लागत में कुटमेश्वरी पुल निर्माण के ठेका लेने 40 मीटर लंबाई 11 मीटर चौड़ाई के पुल निर्माण करवाक समझौता भेल बावजूद समय में काज संपन्न होबन नहीं सकलाक बाद बेर बेर म्याद थपाइत आयल। आब खेल समाचार। दक्षिण अफ्रीका के हरावित कनाडा फीफा विश्व कप फुटबॉल 2026 के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कल अमेरिका के लॉस एंजलस रंगशाला में आई भील पहल नॉकआउट खेल में दक्षिण अफ्रीका के 1-0 गोल अंतर से पराजित करित कनाडा अंतिम 16 में प्रवेश कल कनाडा के लिए स्टेफेन यूस्टाकियो निर्णायक गोल कलन ओ खेल के दोसर हाफ में अतिरिक्त समय में कने गोल निर्णायक साबित भेल। अ संगे तेसर बेर विश्वकप खेल रहा कनाडा पहल बेर अंतिम 16 में पहुंचे में सफल भेल। कनाडा इससे पहले समूह चरणे से बाहर भेल छल। कनाडा समूह बी में दोसर तथा दक्षिण अफ्रीका समूह ए से उपविजेता बनित नॉकआउट चरण में पहुंचल छल। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना स्वयं अही वर्ष स्वदेश घूरब से घोषणा कलन मानवता विरोध के अपराध संबंधी मुद्दा में अनुपस्थित में मृत्युदंड के सजाए सुनेलाक बाद वो एहन प्रतिक्रिया देने 78 वर्षीय हसीना विद्यार्थी नेतृत्व के आंदोलन के कारण सन 2024 के अगस्त में 15 वर्ष लंबा शासन अंत भेलाक बाद पड़ोसी देश भारत में आश्रय लड़ रहा है। एम्हर हुनक सार्वजनिक रूप में ओ कमे देखल गेल छथि। गत जनवरी में ओ नया दिल्ली स्थित प्रेस क्लब से वीडियो मार्फत संबोधन कने छलथि। स्वदेश घूरक के संबंध में पूछल गेल प्रश्न में हसीना कहलन सब बाधा खड़यंत्र के पार करत हम अही वर्ष अपन देश घूरब। गत नवंबर में ढाका के एक अदालत आंदोलन के क्रम में हिंसा भड़कौने हत्या करे के आदेश देने तथा अत्याचार रोक असफल भेल ठहर करत हसीना के अनुपस्थिति में मृत्युदंड के सजाए सुनौने चल। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दीवास से सुन रहा मैथिली भाषा में समाचार पूरा भेल।

0: ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। कल और परसों देश के विभिन्न स्थानों में भारी बारिश की है संभावना। सतर्कता अपनाने का जल तथा मौसम विभाग ने किया है आग्रह। राष्ट्रीय धान दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम हुए आयोजित। पूर्व उप प्रधानमंत्री विष्णु प्रसाद पोडेल को संपत्ति शुद्धिकरण मामले में 3 दिन और हिरासत में रखने का विशेष अदालत ने दी अनुमति। और अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के हवाई हमले में कम से कम 37 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में विनियोजन विधेयक 2083 पर विचार करने के प्रस्ताव को बहुमत से मंजूरी दे दी गई। बैठक में अर्थमंत्री डॉ. स्वर्णिम वागले ने विनियोजन विधेयक 2083 पर विचार किए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। चर्चा के दौरान उठे प्रश्नों का उत्तर देते हुए अर्थमंत्री डॉ. वागले ने कहा कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में गरीब वर्ग की पहुंच आसान बनाने, दलित तथा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने और बिजली क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को अधिक औपचारिक बनाने के लिए आयकर और मूल्यवर्धित कर प्रणाली में सुधार किया गया है। साथ ही आंतरिक उत्पादन को बढ़ावा देने, उद्योग और निजी क्षेत्र के अनुकूल वातावरण तैयार करने और कर व्यवस्था में मौजूद विसंगतियों को दूर करने के उपाय किए गए हैं। विधेयक पर सैद्धांतिक चर्चा में सांसदों ने कहा कि बजट मध्यम वर्ग और गरीब नागरिकों की आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा नहीं कर पाया है। उन्होंने स्थानीय और प्रदेश सरकारों को किए जाने वाले वित्तीय हस्तांतरण की व्यवस्था को और स्पष्ट बनाने तथा महंगी बढ़ने पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक 17 आषाढ़ बुधवार दोपहर 1 बजे होगी। इस समय कोशी, मधेश और बागमती प्रदेश के सभी भूभाग, गंडकी प्रदेश के कुछ भूभाग और लुम्बिनी प्रदेश के पूर्वी हिस्से के कुछ स्थानों में मानसून का प्रभाव है। ये जानकारी मौसम पूर्वानुमान महाशाखा ने दी है। अन्य भूभाग में पश्चिमी वायु और स्थानीय वायु का आंशिक प्रभाव है। साथ ही गंडकी और लुम्बिनी प्रदेश के बाकी भूभाग, कर्णाली और सुदूर पश्चिम प्रदेशों के सभी भूभाग में कल तक मानसून के विस्तार होने की संभावना है। इसे देखते हुए सभी से सतर्क रहने का आग्रह किया गया है। ये बात मौसमविद सरोज पुड़ासैनी ने बताई। इस बीच राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रबंधन प्राधिकरण ने 16 और 17 आषाढ़ यानी कल और परसों देश के विभिन्न हिस्सों में भारी और एक दो स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना जताते हुए लोगों से आवश्यक तैयारी और सतर्कता बरतने की अपील की है। प्राधिकरण ने आज जारी की गई सूचना में अचानक बाढ़ की आशंका वाले नदी, नाले और पहाड़ी झरनों के रास्ते से यात्रा करने वालों को विशेष सावधानी बरतने को कहा है। साथ ही भूस्खलन संभावित क्षेत्रों तथा नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों से भी सतर्क रहने का अनुरोध किया गया है। प्राधिकरण के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान मधेश, कोशी, बागमती, गंडकी, लुम्बिनी और सुदूर पश्चिम प्रदेश के पहाड़ी तथा तराई क्षेत्रों के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी तथा एक दो स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा हो सकती है। वहीं पहाड़ी और तराई क्षेत्रों के अधिकांश और हिमालयी क्षेत्र के कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा की संभावना है। प्राधिकरण ने कहा है कि मानसून की सक्रियता बढ़ने के कारण अचानक बाढ़, भूस्खलन, कटाव, मलबा बहाव तथा शहरी और तराई क्षेत्रों में जल भराव का खतरा बना हुआ है। इसलिए लोगों से आवश्यक सावधानी और पूर्व तैयारी करने की अपील की गई है। प्राधिकरण ने जोखिम वाले राजमार्गों और सड़कों पर डोजर, एक्सकावेटर और लोडर जैसी मशीनें पहले से तैयार रखने और आपदा प्रबंधन से जुड़े साझेदार संगठनों से जिला और स्थानीय आपदा प्रबंधन समितियों के समन्वय में काम करने को कहा है। प्राधिकरण की प्रवक्ता शांति महत ने बताया कि वर्षा और बाढ़ संबंधी जानकारी के लिए 1155, आपदा सहायता के लिए 1149, नेपाल पुलिस के लिए 100 और सशस्त्र पुलिस बल के लिए 1114 हेल्पलाइन नंबर मोबाइल में सुरक्षित रखने और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत संपर्क करने की अपील की गई है। विशेष अदालत ने पूर्व उप प्रधानमंत्री और एवं पूर्व अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पोडेल को संपत्ति शोधन मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए 3 दिन और न्यायिक हिरासत में रखने की अनुमति दी है। न्यायाधीश नारायण प्रसाद पोडेल, हेमंत रावल और उमेश कोयराला की पीठ ने आज संपत्ति शोधन जांच विभाग के अनुरोध पर ये आदेश जारी किया। इससे पहले विशेष अदालत ने इसी मामले में पोडेल को 7 दिन की न्यायिक हिरासत में रखकर जांच करने की अनुमति दी थी। अदालत के आदेश में कहा गया है कि संपत्ति शोधन मामले की जांच के दौरान गिरफ्तार आरोपी विष्णु प्रसाद पौडेल को जांच के उद्देश्य से दूसरी बार 3 दिन की अतिरिक्त न्यायिक हिरासत में रखने की अनुमति दी गई है। नेकपा एमाले के उपाध्यक्ष भी रहे पौडेल को 8 आषाढ़ को सुर्खेत से गिरफ्तार कर काठमांडू लाया गया था। उन्हें आगे की जांच के लिए न्यायिक हिरासत में रखा गया है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
1: भाउजू दर्शन
2: भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
1: हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
3: नमस्ते भाउजू।
2: नमस्ते, आउनु न भित्रै।
3: हुन्छ भाउजू।
1: अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
2: उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
1: हस् हस् भाउजू।
4: ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
1: हे त पनि एनटिसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
5: ए हो र,
1: एनटिसीको डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
6: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
0: अब बाकी समाचार। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने पर्यटन स्थल विकास कार्यक्रम में भ्रष्टाचार के आरोप में बझांग की दुर्गाथली गांवपालिका के कार्यवाहक प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी सहित 9 लोगों के खिलाफ विशेष अदालत में मामला दर्ज किया है। आयोग के अनुसार आर्थिक वर्ष 2075-76 में बाटपाली देवता मंदिर निर्माण के लिए आवंटित बजट में अनियमितता की गई। जांच में वास्तविक निर्माण से अधिक कार्य दिखाकर और फर्जी बिलों के आधार पर 22,01,665 रुपए का भुगतान किए जाने का खुलासा हुआ। आयोग ने कार्यवाहक प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी मकर बहादुर मंडेल, लेखापाल प्रेम प्रसाद पौडेल, इंजीनियर हिकमत रावल, सब इंजीनियर बम बहादुर बोहरा, तत्कालीन उपाध्यक्ष राधिका कुमारी रतला, वार्ड अध्यक्ष मोहन लाल विक और मंदिर निर्माण समिति के 3 पदाधिकारियों के खिलाफ समान राशि की वसूली और कारावास की मांग करते हुए विशेष अदालत में मामला दायर किया है। सरकार के जनता का जलविद्युत कार्यक्रम के तहत विकसित की जा रही 106 मेगावाट क्षमता वाली जगदुल्ला जलविद्युत परियोजना का निर्माण कार्य मुख्य ठेकेदार के साथ समझौता होने के बाद शुरू हो गया है। जगदुल्ला हाइड्रो पावर कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय सापकोटा ने बताया कि परियोजना की विस्तृत इंजीनियरिंग, पर्यावरणीय अध्ययन, भूमि अधिग्रहण, विद्युत खरीद बिक्री समझौता और वित्तीय प्रबंधन का काम पहले से ही पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि कंपनी जगदुल्ला और जगदुल्ला ए परियोजनाओं के माध्यम से कुल 230 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य लेकर चल रही है। सापकोटा के अनुसार परियोजना से बिजली उत्पादन के साथ साथ डुलपा में सड़क, पुल और अन्य बुनियादी ढांचे का भी विकास हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों की आवाजाही आसान हुई है और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। परियोजना के पूरा होने पर संघीय सरकार को प्रतिवर्ष लगभग 19,50,00,000 रुपए, जबकि प्रदेश सरकार और स्थानीय तह को 9.5 करोड़ रुपए रॉयल्टी मिलने का अनुमान है। करीब 16,66,00,000 रुपए की ऋण व्यवस्था स्वदेशी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के सहयोग से की गई है। हर साल आषाढ़ 15 गते मनाया जाने वाला धान दिवस आज खेत में रोपाई लगायत काम करते हुए और दही चूड़ा खाते हुए मनाया गया। इस अवसर पर आज देश के विभिन्न भागों में विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। बता दें कि विक्रम संवत 2061 मार्गशीर्ष 29 गते मंत्री स्तरीय निर्णय कर 2062 आषाढ़ 15 गते से राष्ट्रीय धान दिवस मनाया जाने लगा है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तान की सेना ने रविवार देर रात अफगानिस्तान के कई इलाकों में हवाई हमले किए। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इन हमलों में कम से कम 37 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि मृतकों और घायलों में बड़ी संख्या आम नागरिकों की है। हमले रात के समय किए गए, जिससे कई लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने का अवसर नहीं मिल सका। हवाई हमलों में कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए और अनेक परिवार बेघर हो गए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी है। जर्मनी के उत्तरी शहर स्टेट में सोमवार को हुई गोलीबारी की घटना में 5 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के एक प्रवक्ता के हवाले से बीबीसी ने बताया कि मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से एक को संदिग्ध माना जा रहा है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल आम जनता के लिए किसी तरह का खतरा नहीं है। घटना के बाद इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस और आपातकालीन सेवाओं के कर्मचारी तैनात हैं। प्रशासन ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से अपील की है कि वे एहतियात के तौर पर घटनास्थल और उसके आसपास के क्षेत्र से दूर रहें। स्टेट की आबादी करीब 50,000 है। ये शहर जर्मनी के हैम्बर्ग के पश्चिम में स्थित है।

0: भी एक अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट दी कि अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि मंगलवार को दोहा में बातचीत जारी रखने के लिए मिलेंगे। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी दावा किया है कि ईरान के साथ कल यानी मंगलवार को कतर की राजधानी दोहा में बैठक होगी। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर यह जानकारी दी है। ट्रंप ने लिखा, ईरान ने मीटिंग की मांग की है, ये बैठक कल दोहा में होगी। इससे पहले एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि ईरान और अमेरिका ने एक दूसरे पर हमले रोकने और समझौते पर बातचीत जारी रखने पर सहमति बनाई है। हालांकि ईरानी अधिकारियों ने अभी तक इस रिपोर्ट की पुष्टि नहीं की है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में हॉर्मुज स्ट्रेट के प्रबंधन को लेकर विवाद बढ़ गया था। इसके अलावा ईरान और अमेरिका के बीच सैन्य हमले भी हुए। इन घटनाओं से ये चिंता बढ़ गई थी कि युद्ध विराम टिकेगा या नहीं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कल और परसों देश के विभिन्न स्थानों में भारी बारिश की है संभावना। सतर्कता अपनाने का जल तथा मौसम विभाग ने किया है आग्रह। राष्ट्रीय धान दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम हुए आयोजित। पूर्व उप प्रधानमंत्री विष्णु प्रसाद पटेल को संपत्ति शुद्धिकरण मामले में 3 दिन और हिरासत में रखकर अनुसंधान करने की विशेष अदालत ने दी अनुमति। और अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के हवाई हमले में कम से कम 37 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।
1: सादा खाना 100 रुपियाँ, मटन खाना 200 रुपियाँ। ओए, मोबाइलको डाटा पनि हामीले चलाएको मेनु अनुसार महँगो र सस्तो पर्नु पर्ने होइन र?
2: हुन्छ नि मित्र, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, व्हाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू मात्रै चलाउने हो भने नेपाल टेलिकममा असाध्यै सस्तो मूल्यमा सोसियल मिडिया डाटा प्याक पाइन्छ। त्यही मजाले चलाउने
3: *14#15# डायल गर्नुहोस्।
4: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
5: झण्डु आयुर्वेद,
6: सबै रोगको आयुर्वेदिक पद्धतिबाट उपचार गरिने झण्डु नेपाल प्राली तथा विशेषज्ञ डाक्टर क्लिनिक, पुतली सडक, काठमाडौँ।
5: प्रेसर, सुगर, बाथ, डिप्रेसन, मोटोपन, युरिक एसिड, ग्यास्ट्रिक, पायल्स, दम, अनिद्रा लगायत यौनजन्य समस्याको उपचार गरिन्छ।
6: क्यान्सरका रोगीहरूको लागि पनि विशेष प्रकारको उपचार पद्धति उपलब्ध छ।
5: विशेषज्ञ डाक्टरको सल्लाह बमोजिम औषधि पठाउने र टेलिमेडिसियनको समेत सुविधा छ।
6: झण्डु नेपाल प्राली, पुतली सडक, काठमाडौँ, पद्मोदय स्कुलको पूर्वपट्टि। फोन नम्बर 01-4530-418।